मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

40 मिनट और 3 सेकंड भोर सुहानी का सफर आप तय कर रहे हैं मेरे यानी मंजू के साथ। ये वो समय है जब हमारा मन सबसे ज्यादा शांत होता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो हम खुद के बहुत नजदीक होते हैं, और जब हम खुद के नजदीक होते हैं तो ईश्वर तक पहुंचना आसान हो जाता है। अगला गीत रफी साहब की आवाज में।

सुख के सब साथी दुख में ना कोई, कितना बड़ा और कड़वा सच पिरोया है इस भजन में। ये संसार भी कितना विचित्र है ना। जब हमारे जीवन में सुख की धूप खिलती है, जब सफलता हमारे कदम चूमती है, तो अपनों का चाहने वालों का मेला लग जाता है हमारी जिंदगी में। लेकिन जैसे ही दुखों का साया मंडराता है, जैसे ही कठिन परीक्षा की घड़ी आती है, तो एक एक करके सब साथ हमारा छोड़ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा सहारा भी है जो कभी नहीं छूटता। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी उस ईश्वर का द्वार हमेशा हमारे लिए खुला रहता है।

0: സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞ 59 മിനിറ്റും 53 സെക്കൻഡും. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है. कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई. गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की. भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई. ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, AI और सुविधाजनक यात्रा पर

0: केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और अम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में

0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
1: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम लोग अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में

0: दूसरा स्थान हासिल किया है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वह अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा दो जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. ब्रिक्स

0: सह केन्द्रीय मन्त्रिणा अमितशाहेन सिलिगुड़ी नगरे उपवेशनम् एकं कृतम्। अद्य विषये अस्मिन् निर्णयो अयं जातः यत् तत्रत्य पर्वतीय क्षेत्राणां समाहवानानां स्थायीय समाधानार्थं पूर्व आईपीएस अधिकारिणः पंकज सिंहस्य नेतृत्वे एकस्याः मध्यस्थ समित्याः संरचना जाता। समितिरियं केन्द्रीय कार्यालयं प्रति प्रतिवेदनं प्रेषयिष्यति। सिलिगुड़ी नगरस्य सुकार क्षेत्रे अनुष्ठिते अस्मिन् उपवेशने पश्चिम बंगस्य विपक्षिनेतारः सुवेन्दु अधिकारी अन्ये च गणमान्य जनाः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् भारतदेशेन लाइसेंस राज इत्यस्य कालावधौ उत्पादन दण्डितकरणस्य स्वीय दृष्टिकोणे आधारभूत परिवर्तनं विहितमस्ति। साम्प्रतं तत्स्थाने प्राशासनिक प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव ILPI इत्यनया योजनया माध्यमेन पुरस्कृतः क्रियते। प्रवर्तमान वर्षीय इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्यस्मात् मंचात् संबोधने प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् पुरातनी पद्धतिः सांप्रतिकी पद्धतितः भिन्ना वर्तते। प्रधानमंत्रिणा PLI योजनायाः सफलता अपि चर्चिता, यत्र 2.5 लाख कोटि रूप्यकाणां निवेशः जातः। 22 लाख कोटि रूप्यकाणां उत्पादनं क्रयणं 15 लाख कोटि रूप्यकाणां निर्यातः अपि जातः। 14 लाखाधिकानि वृत्त्यवसराणि अपि सृजितानि।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: श्री मोदी भारतदेशः अन्ताराष्ट्रिय समुदायस्य आशा विकासस्य च उज्ज्वल स्थानं विद्यते इति अपि प्रतिपादितवान्।
1: दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: सर्वकारेण अद्य क्लोरफिनिरामाइन मेलिएट फिनाइले फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड इत्येतयोः घटनानां युक्तानां सर्वासां नियत मात्रा संयोजन औषधीनां निर्माणे विक्रयणे वितरणे च प्रतिबन्धाः सन्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन एका अधिसूचना प्रदर्शिता यस्यां चतुर्वर्षेभ्यः येषु बालेषु एतासां औषधीनां प्रयोगः न करणीयः इति अपि स्पष्टं कृतम्। बालकानां स्वास्थ्य सुरक्षायाः विषये एषः महत्वपूर्णः निर्णयः विद्यते। प्रशासनेन इदम् अपि कथितं यत् एतादृशानां संयोजनानां प्रयोगः बालकेषु हानिकारकः भवितुम् अर्हति। युवा कार्य क्रीडा मन्त्रालयस्य केन्द्रीय मन्त्री डॉ मनसुख मांडविया ब्रिक्स देशानां मन्त्रिभिः वरिष्ठ नेतृभिश्च साकम् अद्य आन्ध्र प्रदेशस्य विशाखापट्टनम नगरस्य समीपे स्थितस्य ऐतिहासिकस्य थोटलाकोंडा क्षेत्रे प्राचीन बौद्ध अवशेषानां स्तूपानां ध्यानकेन्द्राणां पाकशालानां च दर्शनं कृतवान्। डॉ मांडविया एक पेड़ मा के नाम इति अभियानस्य अन्तर्गतं थोटलाकोंडा क्षेत्रे एकं वृक्षारोपणम् अपि कृतवान्। इयं यात्रा प्रवर्तमानवर्षस्य ब्रिक्स अध्यक्षता इत्यस्य कार्यक्रमाणां भागो विद्यते। अद्य सायंकाले विशाखापत्तनम नगरे ब्रिक्स युवा मन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोज्यते। डॉ मनसुख मांडविया इत्यनेन साकं शिक्षा कौशल विकासः उद्यमिता कल्याण सम्पोषण विकासः इत्येतेषु विषयेषु सहयोग सुदृढीकरणस्य उपायानां विषये

0: സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44 മിനിറ്റും 50 സെക്കൻഡും. ഇനി 8:45 സമാചാര സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की. संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया. गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए. भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी. ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया. ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना. बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर. और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं. इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है. इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की. श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी. इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा. इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी. इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है.

0: श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने

0: प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
1: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉ असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारो भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
2: उड़ीसा में एक बार

0: अब प्रस्तुत है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना कामाक्षीम कल्याणी, जो राग कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू कामाक्षीम कल्याणी, अ कंपोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन द रागा कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री श्रेयस नारायणन अब प्रस्तुत कर रहे हैं पेरिया स्वामी तुरन द्वारा रचित ताये त्रिपुर सुंदरी, जो राग शुद्ध सावेरी पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज ताये त्रिपुर सुंदरी इन द राग शुद्ध सावेरी सेट टू खंड चापू ताल कंपोज्ड बाय पेरिया स्वामी तुरन।

0: श्री श्रेयस नारायणन अपने गायन का समापन संत त्यागराज की एक रचना दाशरथी से कर रहे हैं, जो कि राग तोड़ी पर आधारित है और आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री श्रेयस नारायणन कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद दाशरथी, कंपोज्ड बाय त्यागराजा इन द रागा तोड़ी सेट टू आदिताल।

0: not see a reason to hike interest rates now, at least for the Indian economy, and they do not see that danger of inflation, cutting across or impacting, on the core inflation also. So I think it would be early to assume something like that, until unless if the crude, obviously the crude oil prices sustain at these levels. So that needs to be seen. And I would also say to counter that argument that India, when the war started, the US-Iran war, we also took a lot of steps as far as
1: to secure our
0: energy supplies. We have increased the number of sourcing from where the countries about 19, now we've almost doubled. We've around 40, plus we are also spreading our energy base to a lot of renewables. So I think all that, I do not see too much of there will be some impact. Obviously rains are also having an impact, and there will be sentiment also getting negative on certain, but we have good buffers, so I do not see immediately any concern.
2: श्रोताओं और भी खबरों की वेट ना करें कि हमारे समक्ष सिद्धार्थ सिंह मौजूद हैं और अगर आपके भी दिल में कोई सवाल हो तो आप जरूर हमें कॉल करें कॉल मिलाएं और ये नंबर्स हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 आगे और बात करेंगे आपसे सिद्धार्थ मगर उससे पहले आइए जोड़ते हैं अपने पहले कॉलर को दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे थे कृपा शंकर जी मुझे उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे मगर उससे पहले हम एक सवाल मेरे मन में है सिद्धार्थ की आपने जैसा कि बताया कि रेजिलियंस की जो बात है मुझे लगता है कि एक मैच्योर खिलाड़ी की जो पहचान है वो ये है कि वो पिच पर कैसे टिके रहते हैं ये नहीं कि वो कितने छक्के मार रहे हैं और एकदम जो है वो अलंकृत कर दिया है पूरे माहौल को बहरहाल हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का डेटा आया है इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेटा आया है अगर हम Q1 के रिजल्ट्स के लिहाज से देखें तो भी हमने अच्छा एक प्रदर्शन जो है हमारे इकोनॉमी का तो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो या यूं कहें कि हमारा जो बही खाता है उसमें अगर लाल लगे हैं तो हरे के भी निशान हैं
0: नहीं बिल्कुल ठीक कहा प्राची आपने जैसे जो आपने Q1 की जो हम अप्रैल से जून की अगर कॉर्पोरेट जगत की हम अर्निंग्स या जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी मतलब बिल्कुल भी बुरे नहीं थे और अगर आप और ये ऐसे समय पे अप्रैल जून वो समय है जब हमने पूरा जो अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई वो शुरू हो गई थी तकरीबन फरवरी के लास्ट में तो वो अप्रैल जून पहला क्वार्टर पूरा जो है वो उसी में निकला है जब दोनों देशों के बीच में और पूरी दुनिया में जो है
2: इतनी उथल पुथल
0: और अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली क्योंकि एनर्जी जो क्रूड ऑयल है वो एक बेस वो है रॉ मटेरियल है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स मतलब चाहे वो केमिकल्स हों चाहे तो किसी भी तरह का तो वो अगर इफेक्ट होता और वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम 90% उसे आयात करते हैं और उसमें से भी तकरीबन काफी बड़ा आयात हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से ही आता था तो आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए और उसके साथ साथ हमको लगता है जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी भी बनी हुई है जो इन्फ्लेशन के लेवल्स हैं या जो महंगाई दर है वो अभी भी जब मैं कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा कोर इन्फ्लेशन जो ट्रैक करता है तो उसमें अभी कहीं ना कहीं उस तरह की चिंता या जो सेकंड राउंड इफेक्ट हम कहें या कंपनीज पास ऑन कर रही हूँ प्राइजेस ऐसा अभी दिख नहीं रहा है
2: जी दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं कृपा शंकर जी महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए
3: हेलो नमस्कार जी
2: नमस्कार
3: मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि जैसे सर तो विशेषज्ञ हैं तो ये लोग अपने ऑफिस इनके कहाँ हैं जहाँ इनसे हम जाके सलाह ले सकें और सवाल मेरा ये है कि जैसे कि मैं टोटल मेरा अमाउंट जो है FD में लगा हुआ है लगभग 40 लाख ये अक्टूबर में मैच्योर हो जाएगी सितंबर लास्ट में तो ये बताइए कुछ गोल्ड भी है तो ये अब मैं कैसे कहाँ मैं इसको इन्वेस्ट करूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में नयापन है तो
0: कृपा शंकर जी आपकी मैं एज जान सकता हूँ आपकी उम्र उम्र
3: मेरी एज तो लगभग सीनियर हो गई है बच्चों के लिए बच्चे जो मेरे 26-28 के हैं तो उनके लिए आगे क्या रहेगा
0: नहीं कृपा शंकर जी आपका सवाल बहुत अच्छा है देखिए मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ मेरा कोई इस तरह का ऑफिस तो नहीं है मेरा बेसिकली जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है और मैं जो अर्थव्यवस्था करीब

0: मुझे लगता है एक राइट एज है, जैसे ही आप मेच्योर होते हैं 18-19 साल में ही म्यूचुअल फंड में आ जाएं। अगर उन्होंने पीपीएफ अकाउंट आपने नहीं खोला है तो आप वो खोल सकते हैं, क्योंकि वो आज भी सबसे बढ़िया निवेश है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पैसा जब तक निवेशित है तब तक टैक्स फ्री है और आपको जब मिलता है तब भी टैक्स फ्री रहता है। तो पीपीएफ खोलें, म्यूचुअल फंड खोलें, और मार्केट बेस्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटीज मतलब जब स्टॉक मार्केट जो आधारित म्यूचुअल फंड हों उन पर ज़्यादा लगाएं। आपने एफडी कर रखी है तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना पैसे को सुरक्षित एफडी में ही रखें। आपको इस उम्र के इस पड़ाव पे तो मार्केट्स में लगाने की सलाह नहीं,
1: से बेटर इनको अर्न करना है।
0: नहीं, इन्फ्लेशन से भी राजेश, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनको इस वक्त पे डेट मार्केट की भी सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि एफडी में एक सबसे बड़ा फ़ायदा इस समय ये होता है कि आपको जब भी पैसा चाहिए तुरंत मिल जाता है, डेट में भी मिल जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि इस समय के जो डेट फ्लोज इनको उस तरह के डेट में भी उस इन्फ्लेशन को ये बीट कर पाएंगे। और इन्फ्लेशन अभी इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा इस समय नहीं है, थोड़ा सा इस समय बढ़ा है मीडियम टर्म में, बट मुझे लगता है इनको चूंकि सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन होने का भी कुछ फायदा मिल रहा होगा।
2: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता से हमारे साथ अरिजीत चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार, गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम एंड स्पेशलिस्ट सर। आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग, दैट इज मेरे दादाजी ने कुछ शेयर छोड़े थे मेरे नाम पे, तो अभी उस शेयर्स को क्लेम करने के लिए पहले तक के सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लगता था, तो मैंने बीच में सुना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसको हटा दिया क्योंकि काफी लोग वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे, तो आज भी क्या वो सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लागू है?
0: नहीं, नहीं है। नहीं।

0: वो यूनिट्स की का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, तो आपको फायदा जरूर होगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहें और इन्वेस्ट करते रहें।
1: Moving on, the United States has imposed 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products. The tariffs came into effect early today. Canada immediately said it would retaliate after failure of last-minute talks to ease tensions between the two historic allies. The new U.S. tariffs will affect about 5% of Canada's annual exports to the United States. The products include hockey sticks and tongue depressants. Canadian Prime Minister Mark Carney said Canada would match the tariffs dollar for dollar. Mr. Carney blamed Washington for the failure of the talks and said the last-minute changes in the U.S. proposal were unfair and uneconomic. The last line is extremely important, that last-minute changes were very unfair and uneconomic. How safe would our deal be with the United States? Last-minute changes?
0: Rajesh, I think we've had a fairly very detailed discussions, and I think now behind the curtains, the last-minute threadbare details are being, minute details are being worked out.
1: I'm sure Canada also had the last...
0: But with Canada, if you go back, Rajesh, I think there has been some problem with Canada. And last time also when US imposed tariffs on them, Canada retaliated with the
1: Are quite hopeful in our case.
0: Yeah, in our case, obviously, we've come down to 10% now. So, and I don't see, and we are very large partners. Still, we continue to be one of the biggest trading partners. US continues to be our biggest trading partner, and biggest, our exports to US haven't come down. So, we continue to export to US. We are the largest exporters to US. So, I don't see that risk with Mr. Trump. But though, yes, he's unpredictable. Notwithstanding, having said all that, yes, still the unpredictability factor with Mr. Trump always exists, and the example is before us.
2: Siddharth, aur bhi khabrein hain hamare paas jis pe hum aapse baat cheet karenge, magar usse pehle aaiye Bhopal se jode Shankar ko. Shankar ji, karyakram mein aapka abhinandan, kripya apna sawal poochiye.
3: नमस्ते मार्केट मंत्री सरदार जी को नमस्ते। ये जीडीपी रेशो यूएस का डेट टू जीडीपी करीब 123% 126% के आसपास है। अमेरिका जापान का वो ऑलमोस्ट डबल है, जिसकी वजह से वो काफी जबरदस्त रिसेशन में या स्टेग्नेशन में गए थे, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी स्टेग्नेशन में जाने की संभावना है। उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक और इसी से संबंधित सवाल है। यूएस में इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ेंगे नहीं, घटने की उम्मीद है। ऐसा है तो हमारे यहाँ उनकी अगर यील्ड कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो पैसा फ्लो इंडिया में बढ़ेगा क्या? सो दैट वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैन रिमेन इन्वेस्टेड, एंड बिकॉज अवर सेविंग्स इज ऑल इन दैट, अवर पेंशन, अवर फ्यूचर इज लिंक्ड विद अवर म्यूचुअल फंड। सो हाउ इज अवर फ्यूचर इन म्यूचुअल फंड फॉर इन इंडियन इक्विटी मार्केट? थैंक यू।
0: नहीं शंकर जी, आपने काफी अहम चीजें और बहुत जरूरी चीजें उठाई। एक तो मुझे नहीं लगता कि हमें चिंता करनी चाहिए यूएस के डेट को लेके, क्योंकि अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर वहाँ महंगाई बढ़ती है, तो वहाँ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमारे लिए खराब है, और अगर वहाँ इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, जैसा आपने बोला, जो उन्होंने अभी बायबैक प्रोग्राम अनाउंस किया, तो उसके बाद जो है कुछ यील्ड्स वहाँ घटी भी थी, लेकिन अभी वो कितना सस्टेन करती है वो देखने वाली बात है। हाँ, अगर अमेरिकन इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन आता है तो बिल्कुल हमारे ऊपर असर होगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है मार्केट है अमेरिका, साथ साथ हमारी आईटी कंपनीज बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका में जो है काम करती हैं, तो उन पे जरूर उसका इफेक्ट होगा। तो और जहां तक आपका सवाल कि अगर वहां यील्ड कम होती है, तो बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि हो सकता है वहां से इन्वेस्टर ऑलरेडी आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं डेट मार्केट में तो बहुत बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। और देखिए शंकर जी, एक बात और आपको मैं बोलूंगा, अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये आप हमेशा एक भरोसा मान के चलिए कि आपकी अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, दुनिया की आज भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तकरीबन 7% इस साल भी हमारा एस्टिमेट है, 6.7 आरबीआई ने बोला है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी अपने निवेश को लेके कोई चिंता करनी चाहिए। हमारे फंडामेंटल्स हों चाहे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब सॉलिड हैं और कोई भी चिंता की बात नहीं। एक्सपोर्ट्स हों, आप देखिए इस चुनौतीपूर्ण टाइम में भी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। सरकार ने जो है जब ये जो अनसर्टिनिटी दुनिया में आई है, और ये अनसर्टिनिटी तकरीबन दो साल से, टैरिफ हो चाहे चीन को लेके हो, तो हमने एफटीएज वगैरह भी किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हम कर रहे हैं।

0: ताकि हमारी इकोनॉमी, हमारे एक्सपोर्टर्स इन सब चीजों से बचे रहे।
1: दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। अभिनंदन करते हम जरूर अगर योगेश जी के साथ संपर्क जो है वो बरकरार रहता, मगर शायद अभी हमारा संपर्क टूट गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बताया कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा में 21 अगस्त 2026 तक 72 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्रवाह हुआ है। कुल प्रवाह में से विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा का हिस्सा सबसे अधिक यानी 65.4 अरब अमरीकी डॉलर था। वहीं विदेशी मुद्रा उधार से लगभग 5 अरब अमरीकी डॉलर और बाहरी वाणिज्यिक उधार से लगभग 2.5 अरब अमरीकी डॉलर का योगदान रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 8 जून को अनिवासी जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा उधार में आने वाले विदेशी मुद्रा प्रवाह को कवर करने वाली विशेष USD INR विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए लाई गई यह स्वैप सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इस सुविधा को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के कारण इसे एक महीने पहले ही बंद कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अपेक्षित मात्रा में विदेशी मुद्रा का प्रवाह हुआ। यह योजना अब विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा के लिए 31 अगस्त 2026 तक खुली है, जबकि बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा उधार के लिए यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। सिद्धार्थ, RBI का लक्ष्य 80 से 90 बिलियन यूएस डॉलर एकत्र करने का था। इस पर बहुत उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। रुपए की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये कितना, मैं अगर आपसे संक्षिप्त में पूछना चाहूं तो कितना योगदान इसने दिया है?
0: नहीं प्राची, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप अभी देखेंगे आज 21 अगस्त तक की ये जो फिगर्स जो दी हैं उसी में 72 बिलियन डॉलर आ चुका है और 80-90 का टारगेट था, लेकिन अब मुझे लगता है जो RBI ने इसको प्री मेच्योरली क्लोज किया है एक महीना पहले, मुझे लगता है जो उनका एम था वो पूरा हो गया है। अब रुपए भी स्थिर, हमारा जो मुद्रा भंडार है वो भी, उसमें भी आप देखेंगे वो 700 बिलियन के ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको लगा कि अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
2: Global crude oil prices rose to near four-week highs as the 60-day US-Iran memorandum of understanding expired this week without a permanent peace agreement. The Strait of Hormuz remains effectively closed with Iran insisting that it will remain shut until Washington meets Tehran's demands, while the US naval blockade in the region remains in place. Meanwhile, US President Donald Trump has threatened tougher economic sanctions on Iran and its trading partners, raising concerns over tighter oil supplies in the coming weeks. During the week at the International Exchange, Brent crude October futures surged 6.6% to settle at $94.39 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures soared 6.9% to end at $87.06 per barrel.
1: दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी, जैसे मार्केट में वैल्यूएशन देखते हैं तो जो लास्ट ट्रेड में बीएसई इंडेक्स के हिसाब से जो वैल्यूएशन होती है उसका प्राइस अर्निंग रेशियो 20-22 के आसपास रहता है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 32-33 तक रहता है, तो क्या ये नॉर्मल है कि इनका प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा ही रहता है या फिर अभी ये ओवर वैल्यूएट जोन में ही इनको दिखाता है?
0: नहीं, देखिए, दोनों बात आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन जब भी स्मॉल कैप और मिड कैप का आप देखेंगे थोड़ा प्राइस अर्निंग रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता है इन वनस्पत जो BSE के आप इंडेक्स को देखेंगे, तो इसको लेके मुझे नहीं लगता कोई बहुत चिंता करनी चाहिए आपको। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों में जब भी आप निवेश करें थोड़ा उनको फंडामेंटली स्टडी कर लें, उनके ऑर्डर बुक, उनका प्राइस अर्निंग रेशियो वगैरह ध्यान से देखें, उनकी जो मैनेजमेंट है, तो मुझे लगता है बस उस पर ज़्यादा ध्यान दें, बाकी कोई मुझे नहीं लगता चिंता है।
2: Major US stock market indices rose yesterday but ended the week in the red. The Dow Jones Industrial Average advanced 1% and the S&P 500 and Nasdaq Composite each gained 0.4%. However, for the week, the Nasdaq shed 2% and the S&P 500 slipped 1.4% and the Dow fell 0.9%.
1: सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, आपने सभी के जवाब दिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्राची, राजेश, आप दोनों को भी धन्यवाद।
2: थैंक यू सिद्धार्थ फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices declined for the second consecutive week. Sensex and Nifty slips around 0.5%.

0: US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. And global crude oil prices extend their rising streak this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
2: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 11 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। गीत मेरे मनमीत ये वो जगह है, ये वो प्रोग्राम है जहां पर सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर होते हैं। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में एक नई रूह पैदा हुई थी, एक नया जश्न का माहौल था, एक नए तरीके की फिल्में बन रही थी। ये वो दौर था जिसको आज भी हम उसी तरीके से याद करते हैं और ये दौर 1945 से लेकर तकरीबन 1965 के आसपास का माना जाता है। और इस दौर में जो फिल्में बनी वो मील का पत्थर साबित हुई। उन्हीं फिल्मों में से हम कुछ चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इस महफिल में सबसे पहला नगमा विजय भट्ट साहब के निर्देशन में बनी फिल्म बैजो बावरा से। यह फिल्म आई थी 1952 में। इस फिल्म के गीतों को लिखा था बेहद खूबसूरत गीतकार शकील बदायूनी और संगीत था नौशाद साहब का। इस फिल्म के ज्यादातर नगमे शास्त्रीय संगीत पर आधारित थे और ये जो नगमा है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सबसे पहला नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में। और इस फिल्म में जिन लोगों ने अभिनय किया था उनमें मुख्य कलाकारों में भारत भूषण, मीना कुमारी, सुरेंद्र, मनमोहन कृष्ण वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। तो आइए आज के इस सफ़र का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन में।

तो गंगा की मौज में जमुना का धारा, बेहद खूबसूरत यह नगमा फिल्म बैजू बावरा से, यह फिल्म आई थी 1952 में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मन मीत में, जिसमें हम सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत यानी गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमों के साथ हाजिर हैं। तो आए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं, और ये गीत है संगम फिल्म से। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में खुद राज कपूर साहब, वैजयंतीमाला राजेंद्र कुमार और इफ्तिखार राज मेहरा, नाना पालिस्कर, ललिता पवार वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। यह फिल्म राज कपूर साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी। इसे ज्यादातर राज कपूर साहब की शानदार और प्रसिद्ध रचना भी माना जाता है, क्योंकि ये उनके सबसे अच्छे कामों में से एक है। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं मुकेश साहब और वैजयंतीमाला की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। संगीत है शंकर जयकिशन साहब का और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

एक छोटे से वक्फे के बाद रात की इस खामोश फिजा में जहाँ चांद भी कुछ कहने को बेताब है और हवाएं किसी पुरानी मोहब्बत का पैगाम लेकर गुजर रही हैं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, जिसमें गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत सदाबहार नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज़।

दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत का आगाज इजहार से नहीं, बस एक एहसास से होता है। नजर किसी को तलाशती है मगर पहचान बिल्कुल नहीं पाती, और दिल बिना वजह मुस्कुरा उठता है। आज की यह नाजुक सी हसीन सी पेशकश में भी कुछ ऐसा ही है। ये नगमा भी कुछ इसी तरीके का है, जिनमें इश्क की एक छोटी सी दास्तान है। साल 1953 की फिल्म आह से हसरत जयपुरी की एक कलम से निकला ये बेहद खूबसूरत नगमा, जिसे अपनी दिलकश आवाजों से सजाया है लदा जी और मुकेश साहब ने, और जिसकी धुन शंकर जयकिशन साहब ने तैयार की है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है और उनकी धुनें हमेशा याद रहेंगी। तो जिससे आपकी नजर तलाश रही है, ढूंढ रही है और नहीं मिल पाई, अगर आपका जिगर उसे महसूस कर चुका है तो ये गीत उसी के नाम कर दीजिए, अपने प्यार के नाम कर दीजिए। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आ फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा आपके लिए।

दीजिए इजाजत। गीत मेरे मनमीत से आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार आपके साथ रहेंगे मंजू। कल पुनः हमारी और आपकी मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थांकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कल ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग और नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सहयाद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित युद्धाभ्यास उदारा शक्ति 2026 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक पूरी की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन दोनों देशों में भारतीय वायुसेना की तैनाती, उसकी संचालन की पहुंच, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारियों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 MHz पर। ये कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। तो मेरी कहानी का वो किरदार हो जो इसे पढ़ने लायक बनाता है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है राग पहाड़ी और इसे आपके लिए लिखा है शीतल शाह ने। आवाज भी उन्हीं की है। तो आइए सुनते हैं कहानी राग पहाड़ी।

पहाड़ों में गूंजा राग बसंत बहार, कुसुम ने सूटकेस सीट के नीचे रखी। दिल्ली से काठगोदाम जाने वाली एक्सप्रेस सही समय पर रवाना हुई। इस वक्त उसे अपने दिल की धड़कन रेलगाड़ी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी, लेकिन नजरों के सामने नजारे नहीं बीते दिनों की झांकियां तैरने लगी। अतीत के झरोखों से 9 साल पहले का लम्हा लम्हा नजर आने लगा। कहने के लिए कुमाऊं का वह पहाड़ी गांव छोटा सा था, पर कुसुम का सारा संसार उसमें समाया था। स्कूल, सखियां, संगीत, सबसे खास उसका बेस्ट फ्रेंड सौरभ। पगडंडियों पर हंसते खेलते स्कूल जाना, लौटने पर कभी देवदार और साल के पेड़ों की ओट में लुका छुपी खेलना, तो कभी झरने के किनारे रेडियो रेडियो का खेल रचाना। वादियों में उनकी खुशियां गूंजती थी। कुसुम और सौरभ को पहाड़ों से टकराकर लौटती उनकी आवाज की गूंज सुनना बहुत पसंद था। वो गीत सुनाती, राग पहाड़ी उसका सबसे पसंदीदा राग था। सौरभ रेडियो संचालक की अदायगी करता, कभी क्लासरूम में सिखाई गई कविता की पंक्तियां दोहराता, तो कभी अपने मन से गढ़ी हुई तुकबंदी सुनाता। धरती के साथ जब तक रहेगा नब, कुसुम का साथ देगा तब तक सौरभ। कुसुम की आवाज की स्वर लहरिया और छल छल बहते झरने की अटखेलिया, किशोरावस्था की कच्ची धूप में आत्मीय रिश्ते पक्के हो रहे थे।

अभी भी भुला नहीं सकी थी। पापा ने रातों रात गाँव छोड़कर दिल्ली जाने का फैसला किया। 12 साल की कुसुम के मन पर मानो कोई बिजली सी गिरी। अलबत्ता वह जानती थी कि अगर पापा ने यह फैसला लिया है तो उसके पीछे खास वजह जरूर थी। पापा सत्यप्रताप भारद्वाज गांव के विकास कार्यों में सिर्फ इसलिए सक्रिय नहीं थे कि वे सरकारी विभाग के प्रमुख इंजीनियर थे, परंतु वह गांव उनके पुरखों का बसाया हुआ था। बचपन के मित्र राजदीप पाराशर उस गांव के मुखिया थे। भाभी संगीता ने कुसुम को मुंह बोली बेटी माना था। उसे बचपन से संगीत की तालीम भी देती थी। यही कारण था कि कुसुम को कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। सत्यप्रताप ने अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ अपने गांव के हितार्थ लिया। विकास कार्यों के साथ साथ वे पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते थे। बतौर मुखिया राजदीप पाराशर उन तमाम परियोजनाओं को अपने हाथों में लेते थे। बात उस वक्त की है जब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने वहां 5 सितारा हिल रिसोर्ट बनाने के लिए राजदीप को प्रस्ताव भेजा। इसके लिए सरकारी अनुमति की दरकार थी। सत्यप्रताप ने इसकी समीक्षा की और प्रारंभिक मंजूरी दे दी, लेकिन परियोजना के 3 महीने के बाद उस पर रोक लगा दी। कहा, राजदीप, आवंटित की गई जमीन से 3,000 वर्ग फीट पर अधिक तुमने निर्माण काम किया है। वह भूमि खेत की जमीन है। नियम के अनुसार यह अतिक्रमण के वर्ग में आता है। नक्शे के हिसाब से तुम्हें इसमें सुधार करना पड़ेगा, इसीलिए निर्माण काम रोका गया है। यार, रिसोर्ट में मिनी गोल्फ कोर्स को जोड़ने के लिए यह काम करना पड़ा। गोल्फ टूरिज्म को आजकल दुनिया में कितनी तवज्जो मिल रही है। जरा सोचो यार, इस रिसोर्ट में अगर मिनी गोल्फ कोर्स जुड़ जाएगा तो हमारे गांव में पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा। सुनो, अगर गोल्फ कोर्स जोड़ना चाहते हो तो अलग से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। मेरी मानो तो झील के उस पार गांव में गोल्फ कोर्स के लिए आसानी से मंजूरी मिल जाएगी। एक अलग से अर्जी दे दो। भाई सत्या, थोड़ा एडजस्टमेंट करवा दो ना। घी गिरेगा तो हमारी थाली की खिचड़ी में ना। हमारे गांव के लाभ को छोड़कर दूसरों के बारे में क्यों सोचे यार। भाई राजदीप, यह गांव हम दोनों के पूर्वजों ने मेहनत और समर्पण से बनाया था। आज हम दोनों में इतना सामर्थ्य है कि अपना योगदान आसपास के गांवों के विकास के लिए भी कर सकते हैं, ताकि उस गांव के लोगों को भी रोजगार के नए आयाम मिले। देख यार, संसाधनों और मजदूरी की बात करें तो यहाँ रिसोर्ट बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान और फायदेमंद रहेगा। समाज कल्याण तो बाद में भी होता रहेगा। राज, पिछले इन सालों में तुम कितने बदल गए हो। यार देख, यही वक्त है, तुम और मैं मिलकर दौलत कमा सकते हैं। देख राज, दोस्ती अपनी जगह है, कायदे कानून अपनी जगह। भाई सत्यप्रताप, मैं तो दोस्ती के बारे में भी सोच रहा हूँ, दोस्त की बेटी के बारे में भी। इसीलिए तो तुम्हारी बेटी कुसुम और अपने बेटे सौरभ में कोई अंतर नहीं समझता। मेरे घर उसका आना जाना, संगीता से उसका इतना लगाव, मुझे कोई एतराज नहीं है। सोचना तो तुम्हें है कुसुम के बारे में, उसके भविष्य के बारे में। धन राशि कमा लोगे तो उसका भविष्य सुरक्षित कर पाओगे। राज, मेरी दुख तिरक पर हाथ मत रखो। जब सूत्रों से मुझे पता चला कि तुमने पिछले कई परियोजनाओं में पैसों की गफलत की है, मैंने यकीन नहीं किया था, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कानून के दायरे में रहो। दोस्ती भुलाकर कानूनी कार्यवाही करने पर मुझे मजबूर मत करो। इससे राजदीप का गुस्सा हद पार कर गया। मौका देखकर उसने गंदी चाल चली

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सत्य प्रताप जब नैनीताल गए, तब राजदीप ने उन तमाम लोगों को बुलाया जिनके खेतों की जमीन निर्माणाधीन रिसोर्ट में आ रही थी। मुंह मांगे दाम पर जमीन खरीद ली। दूसरे दिन सरपंच की बैठक बुलाई। गांव के लोग भी उपस्थित हुए। इनमें ज्यादातर राजदीप के आदमी थे। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इन दिनों क्यों सत्य प्रताप अपने गांव के विकास परियोजना में रोड़े डालते हैं, जानबूझकर नीति नियमों का वास्ता देकर काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। राजदीप ने भी ढोंग रचा, बोला, हाँ, मेरे सत्या से इस पर जब बात हुई थी तब वह आसपास के गांवों को ज्यादा तवज्जो दे रहा था। भीड़ में से कोई चिल्लाया, कहीं इसमें उसका कोई निहित स्वार्थ तो नहीं है? प्लान के मुताबिक कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सत्य प्रताप के खिलाफ लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। यह सब जब हो रहा था तब कुसुम सौरभ के साथ पढ़ाई कर रही थी, राजदीप के घर पे थी। नारेबाजी सुनकर वह सहम गई। संगीता ने खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे लगा दिए। बच्चों का मूड बदलने के लिए वह बोली, सौरभ, आज कौन सी कविता सीखी स्कूल में, चलो दोहराओ तो। उसके बाद कुसुम एक अच्छा सा गीत राग पहाड़ी में सुनाएगी। सौरभ ने टेबल पर रखी चम्मच को अपना माइक बना लिया। दोनों के सामने बैठकर सुनाई अपनी कविता। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। दो लोगों की ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई। कुसुम ने भी गीत सुनाया। फिर संगीता बोली, कुसुम चलो जल्दी खाना खा लो और सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है ना।

कुसुम को कमरे में सुलाकर संगीता बाहर आई। सौरभ ने पूछा, माँ सत्यप्रताप अंकल और पापा इतने अच्छे दोस्त हैं ना, मगर आज पापा ने उनका बचाव क्यों नहीं किया? संगीता बोली, बेटा तुम अभी छोटे हो, वक्त और हालात के साथ रिश्तों में बदलते समीकरण को इस वक्त समझ नहीं पाओगे। हर रिश्ता एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरता है, कभी दौलत

कभी किस्मत हर संबंध को आजमाती है। अगर रिश्ता सच्चा हो तो उस अग्नि परीक्षा में पास हो जाता है और संबंध और भी पक्का हो जाता है। अब इन दोनों की दोस्ती भी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। तुम फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम भी जाकर सो जाओ। राजदीप घर लौटे। संगीता ने कहा, ईश्वर का दिया सब कुछ हमारे पास है, अचानक ये दौलत कमाने की इतनी भूख क्यों? अरे तुम दोनों के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। अरे सुनिए, नैतिकता को दांव पर लगाकर कमाया गया धन हमारे किस काम का? अब सौरभ भी बड़ा हो रहा है, आपकी करनी का उस पर भी तो असर होगा। संगीता, बहती गंगा में हाथ धोने में अकलमंदी है, वरना तब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग जाएगी खेत। संगीता ने बस आंखें बंद कर ली और दोनों बच्चों के बारे में सोचने लगी। वहां सत्यप्रताप भी कुसुम के बारे में सोच रहे थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली से आए पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव दिया, पहाड़ी पारिस्थितिकी संतुलन समिति में उन्हें सलाहकार के रूप में नामांकित किया गया था। इस नए पदभार को संभालने के लिए उन्हें दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। सत्यप्रताप कुसुम के बारे में सोचने लगे और सालों से राजदीप की दोस्ती उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी। दिन भर इस धर्म संकट से जूझते रहे। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से कहा कि कुछ सोचकर बताता हूं। वे अपने गांव लौट आए। सत्यप्रताप ने कहा, भाभी जी, कुसुम स्कूल से आ गई क्या? हाँ भाई साहब, संगीत का रियाज कर रही है। तभी राजदीप ने व्यंग्य में कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी के हमारे घर अच्छी देखभाल होती है। सत्यप्रताप कुसुम को लेकर घर तो आए, पर पिछले दो दिनों में हुई घटनाक्रम के बारे में सुना, रात भर चिंतन किया। राजदीप का बदलता रुख और दौलत कमाने की अंधी दौड़ अब मित्रता की आहुति ले रही थी। उसके परिवार से कुसुम की आत्मीयता आगे चलकर कहीं बोझ न बन जाए, यही सोचकर सत्यप्रताप ने फैसला किया। दो फोन कॉल लगाए, अपने आला अधिकारियों से बातचीत की। अगली सुबह कुसुम को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली जाते वक्त पापा ने कहा था, पता है कुसुम, भगवान कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ी थी? पूरी तन्मयता से जिस राज्य को संभाला था उसे छोड़कर नई द्वारिका नगरी क्यों बसाई थी? बेटा, क्योंकि जिस प्रजा से वो इतना प्रेम करते थे वे उनकी रक्षा करना चाहते थे, पर प्राणों से प्यारी जनता को रण में झोंक कर उनका अहित मंजूर नहीं था। इस वक्त तुम छोटी हो, इस वक्त शायद तुम्हें मेरा फैसला समझ नहीं आएगा, लेकिन कुसुम, वक्त आने पर तुम जान जाओगी। इतना याद रखना बेटा कि जब बात सिद्धांतों की हो तो समझौता नहीं किया जाता। ट्रेन में बैठी बैठी कुसुम अपने सिद्धांतवादी पापा की बात समझने लगी थी। जिन परिस्थितियों में मजबूर होकर पापा ने गांव छोड़ा था, कमोबश कुछ ऐसे ही हालात कुसुम की जिंदगी में आ गए थे। वरना दिल्ली में सबसे लोकप्रिय टेलीविजन रियलिटी शो को बीच में छोड़कर वह अपने गांव वापस जाने के बारे में क्यों सोचती? पापा की कही बात मन में गूंजने लगी, किस्मत जब एक दरवाजा बंद करती है तब कुदरत हजार नई खिड़कियां खोल देती है। बंद दरवाजे की दहलीज पर सर पीटने के बजाय जरूरत है खुले झरोखों की ओर

कुसुम के ख्यालों का सिलसिला अचानक टूटा। काठगोदाम स्टेशन आ गया था। अपनी सूटकेस और हैंडबैग लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरी। वक्त ने कैसी करवट ली है ना। 9 साल पहले जिस गांव को छोड़कर गई थी, आज वहीं वापस लौटी है। गांव तक जाने के लिए टैक्सी उसका इंतजार कर रही थी। वह गाड़ी में बैठी। 9 साल बाद फिर से पहाड़ों की आगोश में

अपने रेडियो स्टेशन की ओर से आयोजित राग पहाड़ी उत्सव में भाग लेने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। कुसुम सोचने लगी, अगर टेलीविजन पर उस रियलिटी शो के आधार पर उसे गाने के लिए निमंत्रण मिला है तो बात अजीब है ना, क्योंकि जिस शो की वह टॉप 5 प्रतियोगी में शुमार हो चुकी थी उसी शो में वह बदनामी का शिकार भी तो हुई थी। सोशल मीडिया में लोग उसे ट्रोल करने लगे थे। इसके बावजूद कुमाऊं के उस रेडियो स्टेशन से उसे उत्सव में लाइव गाने के लिए बाइज्जत बुलाया गया। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ हैरानी हुई, क्योंकि टेलीविजन पर शो के दौरान बतौर निर्णायक आए उस सेलिब्रिटी ने रिहर्सल के दौरान कुसुम से बदतमीजी की थी। कुसुम ने आयोजकों से उस सेलिब्रिटी के खिलाफ शिकायत दायर करने की अपील की। प्रतियोगिता का फिनाले नजदीक था, शो के टीआरपी पर असर होने का डर था, तो कुसुम को खामोश रहने की सलाह दी गई। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाती, उस सेलिब्रिटी ने अपने चैनल पर कुसुम का चरित्र हनन किया, कहा कि जीतने के लिए प्रतियोगी ने उस पर डोरे डाले थे। लाखों फैन फॉलोइंग वाले चैनल पर कही गई यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पापा की मौत के बाद कुसुम ने अपनी गायकी को जीवन का आधार बनाया था, लेकिन इस घटना ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। सहमी हुई कुसुम नहीं जानती थी कि कहां जाए। पापा की बात याद आई, किस्मत एक दरवाजा बंद करे तो कुदरत हजार खिड़कियां खोल देती है। उसी रात ईमेल पर राग पहाड़ी उत्सव के लिए आमंत्रण आया, स्टेशन से पिकअप और सर्किट हाउस में रहने की व्यवस्था का मैसेज भी था। टैक्सी रुकी, ख्यालों का सिलसिला भी थम गया। उसी झरने के किनारे सर्किट हाउस था। 5 साल पहले वहां भूस्खलन की खबर टीवी पर देखी थी। उसके दिल में मानो कोई भूचाल आ गया था, वो कितना रोई थी। इस वक्त वो गांव का नजारा देख रही थी, सब कुछ बदला बदला लग रहा था। कमरे में सामान रखकर कुसुम रिसेप्शन में आई। मैनेजर ने बताया कि शाम को राग पहाड़ी उत्सव की टीम उससे मिलने आएगी। कुसुम ने अपनी शॉल ओढ़ी, झरने के पास टहलने गई। बचपन की सारी खूबसूरत यादें पलकों पर आरोहित होने लगी। बचपन का हर पल संगीता आंटी और सौरभ की सुखद स्मृति से सजा था। दिल्ली जाने के बाद पापा के कहने पर उसने सौरभ से संपर्क तोड़ दिया था। न अपना पता या नंबर उसे दिया, न कभी उसे कॉल किया। लेकिन जब टीवी पर लैंडस्लाइड की खबर आई थी तो लैंडलाइन पर उसने फौरन फोन किया था, लेकिन पता चला कि वह नंबर अस्तित्व में नहीं है। कुसुम की नजर इस वक्त देवदार के उस पेड़ पर पड़ी जिस पर सौरभ ने लिखा था, जब तक रहेगा धरती के संग नभ तब तक साथ रहेगा कुसुम संग सौरभ। सौरभ को याद करके इस कदर सस्कियां भरने लगी

कि पीछे से जब किसी ने उसका नाम पुकारा, उसे सुनाई नहीं दिया। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कुसुम ने मुड़कर देखा तो लंबे कद का एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। कुसुम की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, ठीक से उसको देख नहीं पाई। उस नौजवान ने अपने रुमाल से कुसुम के आंसू पोंछे, रूहानी आवाज में बोला, चाहे जितनी तेज हो हालात की आंधी, कुसुम कभी आंसू नहीं बहाती। बुझ से बैठी कुसुम टकटकी लगाकर उसे देख रही थी। हौले से पूछा, सौरभ।

जी हाँ मैडम जी, राग पहाड़ी उत्सव में आपका स्वागत है। इस बार आंसुओं की धारा खुशी की थी, गले से आवाज निकल नहीं रही थी, बस अपनी उंगलियां सौरभ के चेहरे पर घुमा रही थी। सिसकी भरने के बाद गला साफ किया और पूछा, यह कोई ख्वाब तो नहीं है? 9 साल का अंतराल बुरा सपना जरूर था, वह बीत गया है कुसुम। अब तुम और मैं आमने सामने हैं, यह इस लम्हे की हकीकत है। सौरभ, तो इस उत्सव में भाग लेने के लिए तुमने मुझे न्योता भेजा है? देश की उभरती हुई गायिका का स्थानीय रेडियो के क्रिएटिव हेड सौरभ पराशर की ओर से हार्दिक स्वागत है। सौरभ, तुम्हें मेरा मेल आईडी कैसे मिला? 9 साल से शिद्दत से तुम्हें तलाशता रहा, अचानक टीवी पर रियलिटी शो में तुम्हें देखा, तुम्हें फॉलो करता रहा। तो फिर तुमने सोशल मीडिया पर मेरे बारे में भी, तो मुझे अपनी कुसुम पर यकीन है, आदर्शवादी पापा की सिद्धांतवती बेटी कुसुम शो छोड़ सकती है पर समझौता नहीं कर सकती। कुसुम की आंखें फिर से भर आई, सौरभ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हें पल पल याद करने का यही सिला है, लंबी तपस्या के बाद शुभ फल मुझे मिला है। सौरभ, हालात ऐसे थे कि मैं तुम्हें संपर्क नहीं कर पाई, मगर बताओ संगीता आंटी कैसी है? और अंकल, माँ तुम्हें देखने के लिए बेताब है। पता है तुम्हें कुसुम, रेडियो स्टेशन की वे अब सीनियर प्रोग्राम प्रोड्यूसर है। अरे वाह, सीरियसली? तो मुझे बताओ कि ये नाम राग पहाड़ी उत्सव उन्हीं ने दिया होगा। ओ मैडम, सुनना चाहती हो तो सुनो, राग पहाड़ी उत्सव ये नाम उनके बेटे ने दिया है, यानी मैंने, क्योंकि तुम्हें ये राग बहुत पसंद है ना? कुसुम मुस्कुराकर बोली, ये राग तुम्हारे बगैर अधूरा था सौरभ। सौरभ ने कुसुम का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर कुसुम ने अचानक पूछा, अच्छा बताओ अंकल कैसे हैं? उसने जवाब दिया, कुछ साल पहले यहां भूस्खलन हुआ था कुसुम, बहुत सारे मकान बह गए थे, पिताजी भी उस वक्त, ओ आई एम सो सॉरी, मगर पता है उस वक्त कुसुम माँ के साथ मैं रेडियो स्टेशन में था। कुसुम सौरभ से लिपट गई, भगवान की दया है कि तुम ठीक हो सौरभ, पता है उस वक्त मैंने टीवी पर यह खबर देखी थी, मैंने फोन भी लगाया था, मैं कितनी डर गई थी। कुसुम, याद है तुमसे मैंने वादा किया था, 1000 साल तक कुसुम और सौरभ साथ रहेंगे, वक्त के दरिया में बस 9 साल बह गए हैं, अभी तो सदियों का साथ बाकी है, राग पहाड़ी में तुम्हारी आवाज का गूंजना बाकी है, मेरे दिल के आंगन में तुम्हारा खिलखिलाना बाकी है, बसंत बहार में बगिया का महकना बाकी है।

थी कहानी राग पहाड़ी, आपको सुना रही थी शीतल शाह, और ये कहानी भी उन्हीं की लिखी हुई थी। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। तो अब मुझे इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर ईमेल कीजिएगा fmgoldchannel@gmail.com पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की।

0: वर्ष में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हित की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कल ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार और रोजगार तथा कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन एगुलेरा ने कल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। ये दौरा संग्रहालय के आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ जिसमें उनके साथ प्रथम सचिव और क्यूबा के अन्य राजनयिक भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने संग्रहालय के विभिन्न दीर्घाओं का भ्रमण किया जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों की विरासत और उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया है। श्री एगुलेरा ने कहा कि भारत और क्यूबा के बीच 66 वर्षों से अधिक समय से राजनयिक और द्विपक्षीय संबंध हैं। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की तिरसा जौहरी और गायत्री गोपीचंद को चीन की ल्यू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत की जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। भारतीय टीम FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स से 1-3 से हार कर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम चार में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरे दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed National Office Bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's National Vice Presidents and General Secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication.

सुन रहे हैं आप स्वादिष्ट मिलो एक पीगा हर्ट्ज पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफर बंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ के साथ।

महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत, फिल्म का नाम गीत गाया पत्थरों ने, संगीत था रामलाल का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1964 में और इस फिल्म का निर्माण किया था वी शांताराम ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी जितेंद्र और राजश्री ने और ये इन दोनों की पहली फिल्म थी। अगला गीत रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म का नाम लव मैरिज और आवाजें थी लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था सुबोध मुखर्जी ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद और माला सिन्हा ने। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में आप

चौदहवीं का चांद फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये खूबसूरत गीत। संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। ये फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने और निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज़ के फूल की असफलता के बाद गुरुदत्त साहब के लिए ये फिल्म कामयाब फिल्म रही और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये फिल्म। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पतंग से। इस गीत का संगीत है चित्रगुप्त का और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

101 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 2 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

फिल्म उजाला से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और ये फिल्म आई थी 1959 में और ये एक रोमांटिक क्राइम फिल्म थी जिसमें शमी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार, लीला चिटनिस और टुनटुन ने अभिनय किया था। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था नरेश सहगल ने और इस फिल्म का संदेश यही था कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। और अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म का नाम पारसमणि और आवाज थी रफी साहब और लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार असद भोपाली। ये फिल्म 1963 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक संगीतमय फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबू भाई मिस्त्री ने और ये फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही थी और इस फिल्म को मायामणि शीर्षक से 1964 में तमिल में रिलीज किया गया था। अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और आशा जी की आवाज़ में फिल्म उस्तादों के उस्ताद से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश के पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर शिकनेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल ग्रीक के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरा पेट्रिटिस से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने मौजूदा भू राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। दोनों ने एक दूसरे के संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई। उन्होंने मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दिलट्टी से भी टेलीफोन पर बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा के तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत एमवी ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में से 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। ये पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन एगुइलेरा ने कल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। ये दौरा संग्रहालय के आउटरीच कार्यक्रम की अंतर्गत हुआ, जिसमें उनके साथ प्रथम सचिव और क्यूबा के अन्य राजनयिक भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं का भ्रमण किया, जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों की विरासत और उनके योगदान को प्रदर्शित किया गया है। श्री एगुवेरा ने कहा कि भारत और क्यूबा के बीच 66 वर्षों से अधिक समय से राजनयिक और द्विपक्षीय संबंध हैं। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद को चीन की लियू शेंग शू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित किया। भारतीय टीम FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हार कर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरे दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of BJP to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programmes.

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे, किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर पंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 3 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ के साथ।

प्यार में ऐसा ही होता है, ना घर चाहिए होता है ना ही दुनियादारी चाहिए होती है, बस साथी की एक नज़र ही काफ़ी होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि आशियाने तो ज़मीन पर बनते हैं, दीवानों की दुनिया तो दिल से बनती है, जहाँ पर ना शर्तों की जगह होती है ना ही कोई शिकायत होती है, बस एक साथ होता है जो ताउम्र साथ चलता है। अगला गीत आप ही के लिए।

तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था, तो मैंने ये जाना कि दो शहरों की दूरी सिर्फ हाथों को थाम लेने भर से कम हो जाती है।

छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूँ, वापस तो आकर देखिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मुझे खींच ही लेती है हर बार उसकी मोहब्बत, मुझे खींच ही लेती है हर बार उसकी मोहब्बत, वरना बहुत बार मिली हूँ आखिरी बार उससे। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, 101 MHz पर। मैं हूँ आपके साथ, आपकी रात की हम सफ़र मंजू। 2:38 और 15 सेकंड हुए हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत आप ही के लिए।

0: चले।
1: वैसे ये बात तो सच है कि प्यार का जहाँ बसाने के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, प्यार और विश्वास होना चाहिए और तैयार हो जाती है एक अलग दुनिया। यकीन ना हो तो करके देखिए। अगला गीत आप ही के लिए।

वाकई मौसम मस्ताना तो है पर रास्ता बिल्कुल भी अनजाना नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी कि अपनी रात की हम सफर के साथ। और मेरे साथ जुड़ने का मतलब है दिल से दिल तक जुड़ना। अगला गीत आप ही के लिए।

अगर बात सपनों तक पहुंच गई है तो प्यार का मामला काफी आगे निकल चुका है, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि प्यार का इजहार कर लिया जाए। अब जब मौसम रोमांटिक हो चला है तो फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और रोमांटिक गीत सुन लिया जाए।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी रूपा धवन। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इनके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन

0: राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद GRSE भवन में MSME के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बगान सुपर जायंट्स के बीच फुटबॉल ड्यूरेंट कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत MV ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में 20 चीनी, 3 म्यांमा और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। ये पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed National Office Bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's National Vice Presidents and General Secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programmes. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Raksha Mantri Rajnath Singh will participate in the Bhumi Pujan ceremony in Kolkata today for 5 facilities of Garden Reach Shipbuilders and Engineers GRSE Limited and Yantra India Limited at Garden Reach. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will also attend the event. An interaction session with MSMEs at GRSE Bhavan will be held after the foundation stone laying ceremony. Raksha Mantri will witness the final of Durant Cup between East Bengal FC and Mohan Bagan Super Giant at Yuva Bharti Kridangan later in the day. The Indian Air Force, IAF,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां वक्त हुआ है इस वक्त 3:11:24। आप हैं हमराही कार्यक्रम में रूपा धवन के साथ, और आज हम कौन से गीत सुनेंगे और क्या उनकी भाषा होगी, क्या उनकी भावनाएं होंगी, जानेंगे। लेकिन इस गीत के बाद शायद इस गीत से ही आपको कुछ पता चल जाए कि आज हम किस शब्द पर या किस भाव पर आपको गीत सुनाएंगे हमराही कार्यक्रम में। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और लीजिए, आ रहा है पहला गीत आपकी ओर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

दिल की जमी पर जब यादों की फसल बोगी, दिल की जमी पर जब यादों की फसल बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना ही रोगे। दिल पे बहुत मुश्किल है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। किसी और को क्यों देखें ये आंखें मेरी जब दिल पर

लिखा है नाम सिर्फ तेरा। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम हमराही में आपको गीत सुनवाएंगे दिल शब्द के ऊपर। दिल की गहराई और जज्बात, दोस्तों कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि दिल की गहराई क्या है, दिल के जज्बात क्या हैं। इनमें जितना आप उतरेंगे उतना ही आप डूबते चले जाएंगे। रात की इस बेहद खूबसूरत खामोशी और इस खामोश सफर के साथ ही आप और हम सुन रहे हैं दिल की धड़कनों को, कार्यक्रम हमराही के जरिए। रात के इस पहर में जब शहर की हलचल थम जाती है, तब एक चीज है जो सबसे ज्यादा बातें करता है, दिल। रात के सन्नाटे को चीरती हुई दिल की धड़कनों के साथ आज हमराही में सुनेंगे दिल शब्द पर फिल्मी युगल गीतों को, जिन्होंने दो दिलों को जोड़ा है और शायद दो दिलों के मिलने का कुछ गहरी वजह भी हो सकती है। तभी तो दो दिलों की मुलाकात होती है, और जब दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तब एक दूसरे को दोनों तड़प तड़प कर कुछ इस तरह से पुकारते हैं,

ये दिल कितना पागल है, हर पल तेरे ही ख्वाब ये बुनता है, रहता है मेरे सीने में, धड़कन पर तेरी ही सुनता है।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तो लीजिए जनाब, आपकी और हमारी मुलाकात का सिलसिला बरकरार है, जारी है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपने ही दोस्त रूपा के साथ, और आज हम बातें कर रहे हैं दिल की, और दिल की धड़कनों से जुड़े गीत आपको हम सुनवा रहे हैं हमराही कार्यक्रम में।

जी हाँ, तस्वीर जब दिलों पर उभरती है तो अपने अजीज को कुछ इसी तरह से याद करती है। और अगर बात करें नज़र की, तो नज़रें क्या कहती हैं? दिल की नज़र जब दिल से मिलती है तब क्या असर होता है, आइए जानते हैं फिल्म अनाड़ी का गीत सुनकर। लता जी और मुकेश साहब का स्वर।

साथियों कहते हैं दिल बहुत जिद्दी होता है, पर जब इसे किसी से मोहब्बत होती है तो ये बहुत मासूम हो जाता है। इस रात की गहराई में छुपाए हुए दर्द जज्बात भी बाहर आने लगते हैं, और ऐसे में जब किसी की याद आए तब रफ़ी साहब, मुकेश साहब, महेंद्र जी और लता जी की आवाज़ों से सजा हुआ जब गीत सुने हम, तो इससे बेहतर तो कोई मरहम हो ही नहीं सकता। संगम फिल्म का भी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश साहब, महेंद्र जी और लता जी के स्वर में। ये गीत आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

साथियों, रात के इस पहर में दिल अक्सर पुरानी यादों के पन्ने पलटता है, जिन्हें हम टूटकर मोहब्बत करते हैं। उनके बिना जब रहना पड़ता है तो दिल संभाले नहीं संभलता। कुछ ऐसा ही जज्बा है इस प्यारे से गीत में, जिसे हम शामिल कर रहे हैं फिल्म रात से। लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ से सजा ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

जनाब, समय बीतता है, जमाना बदलता है, लेकिन दिल की भाषा हमेशा एक सी रहती है। चाहे 70 का दौर हो या आज का जमाना, जब दो दिल आपस में बातें करते हैं तो धड़कनें संगीत बन जाती है। अगला गीत दिल की पुकार के नाम, दो रास्ते फिल्म का ये गीत आपके लिए, रफी साहब और लता जी के स्वर में।

आइए चलते हैं अब रेट्रो दौर में, जहां मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले के उस क्लासिक युगल गीत की तरफ जिसने दिल चुराने का सभी को हुनर सिखाया। यादों की बारात का ये गीत आशा भोसले और रफी साहब के स्वर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी का एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया।

0: दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री जयशंकर भारत और रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर हुआ। मालवाहक पोत एमवी ओशियन विनर पर सवार चालक दल के सदस्यों में 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेश का नागरिक है। यह पोत ओडिशा से 72,100 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। महाराष्ट्र और जर्मनी के हिस्से राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में कल सहयाद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस बीच कोच पुलेला गोपीचंद ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में शानदार उपलब्धि के लिए दोनों खिलाड़ियों की प्रशंसा की और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इस जोड़ी ने एक साथ खेलते हुए काफी प्रगति की है। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। वेनेगर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives, aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first 2 stanzas at Congress programs. The party also resolved to uphold the honour, dignity, legacy and national status of the complete Vande Mataram as the national song of India, as an immortal symbol of the country's national consciousness and freedom struggle. Raksha Mantri Rajnath Singh will participate in the Bhumi Pujan ceremony in Kolkata today for 5 facilities of Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSC Limited and Yantra India Limited at Garden Reach. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will also attend the event. An interaction session with MSMEs at GRSC Bhavan will be held after the foundation stone laying ceremony. Raksha Mantri will witness the final of Durant Cup between East Bengal FC and Mohan Bagan Super Giant at Yuva Bharti Kridangan later in the day. The Indian Air Force IAF has successfully concluded its participation in 2 international flight engagements, including Exercise Pitch Black 2026 in Australia and Exercise Udar Shakti 2026 in Malaysia. Defence Ministry said that the dual nation deployment underscored the IAF's operational reach, advanced tactical coordination and commitment to strengthening strategic defence partnerships across the Indo-Pacific region. National Testing Agency NTA has issued a show cause notice to Messrs. Adequity Courier Technologies Private Limited for lapses in the conduct of the All India Ayush

जब आप दुखी होते हैं तो जीवन आप पर हंसता है, और जब आप खुश होते हैं तो जीवन आप पर मुस्कुराता है, लेकिन जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो जीवन आपको सलाम करता है। जी हाँ, सलाम करते हैं हम भी और नमस्कार करते हैं आप सभी को आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमारे जुड़े सभी श्रोताओं को, हमारे सभी साथियों को, और स्वागत करते हैं आप सभी का तहे दिल से। ये समय ऐसा समय है जब रात तो बीतने को है और दिन की जो उजली लालिमा है वो आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब चंदा अपने रास्ते पर जाए और सूरज अपने रास्ते पर आए, एक सुनहरे रथ पर तैयार होकर। तो इसी समय को मद्देनजर रखते हुए हम और आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरुणिमा की। अरुणिमा, जो सुनहरी किरणों से सजा रथ आपके लिए तैयार रहता है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, रूपा है आपके साथ और आप हैं हमारे साथ। तो इसी तरह जुड़ी रहिए, बने रहिए, बातें होंगी ढेर सारी और गीत भी हम सुनेंगे ढेर सारे।

साथियों, सकारात्मक सोच आगे बढ़ने का एक बेहद प्रेरणादायी सबब बन जाती है। जब कुछ नहीं सोचता तब हमारे साथ हमारे सकारात्मक विचार चलते हैं। अरुणिमा में सकारात्मक विचारों के साथ सुनेंगे कुछ चुनिंदा गीतों को आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। जाली नोट फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए।

जिंदगी में मुश्किलें हमारा इम्तिहान लेने आती हैं, हमारी राहें रोकने नहीं आती, क्योंकि हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और ताकत से परिचित नहीं होते। पर जब हमें परेशानियां घेरती हैं, तब अपने भीतर छुपी ताकत से हम परिचित होते हैं। इसीलिए तो किसी ने खूब कहा है कि हमें इम्तिहान से घबराना नहीं है, बल्कि हंसकर हर तूफान का सामना करना है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाश।

आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है इस वक्त 4:33 और 54 सेकंड। आप हैं अरुणिमा में अपनी ही दोस्त रूपा के साथ। तो दोस्तों, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जब जिंदगी है, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तो क्यों ना जिंदगी को हंसते हंसते बिताया जाए और गाते गुनगुनाते गीतों के साथ इस सफर को और भी मजबूत बनाया जाए, खुद को भी और दूसरों को भी जो हमारे साथ रहते हैं या हमारे आसपास रहते हैं।

गहरी हो, भोर होने से रोक नहीं सकती। रुकावटें कितनी भी हों, तेरी राह रोक नहीं सकती। पंख समेट कर बैठना छोड़, खुले आसमान में उड़ना सीख। तो खुद अपनी तकदीर है, हर गिरते कदम से उठना सीख। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमें हर गलती से एक सबक लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहना है, और उसी हिम्मत और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये जीवन है और जीवन सुख दुख धूप और छांव का खेल है। आप जुड़े हुए हैं अरुणिमा में अपनी दोस्त रूपा के साथ, और आप सुन रहे हैं अरुणिमा कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

हमारे छोटे छोटे प्रयास चाहे वो धीमी गति से हो, रुक जाने से तो कहीं बेहतर है। हर छोटा कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। अरुणिमा का सफर यहीं तक। रूपा को अनुमति दीजिए, आपसे थोड़ी देर में फिर से मुलाकात होगी भोर सुहानी में। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, तब तक के लिए विदा लेती है रूपा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठकें की। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी।

0: इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 केंद्रों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद जेआरएसई भवन में एमएसएमई के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री युवा भारती क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर ज्वाइंट्स के बीच डूरंड कप का फाइनल मुकाबला भी देखेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश उद्योग नवाचार रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुंबई में कल सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस रायन ने समझौते

साथियों, सपनों की उड़ान आसमान तक लेकर तो जाएगी, हर मेहनत की रोशनी हर अंधेरे को मिटाएगी। हर सुबह विश्वास जगाकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेहनत ही हमें मंजिल दिलाएगी। जी हाँ, मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद यकीनन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता तो है, साथ ही हमें एक नई दिशा भी प्रदान करता है। स्वागत है आप सभी का भोर सुहानी कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम जुड़ा है एक नई ऊर्जा के साथ, आपके साथ, जिसे आप सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तो जब हमें नई दिशा प्रदान करता ही है ईश्वर, तो क्यों ना इस खूबसूरत और बेहतरीन सुबह में भी आज हम स्मरण करें उस परमात्मा का जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। भोर सुहानी में आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और सुप्रभात।

वाकई इस सृष्टि का निर्माण करने वाले परमात्मा का जब भजन सुनो तो आनंद ही आ जाता है। ऐसा लगता है कि आज का दिन तो हमारा बन ही गया। दोस्तों, सुबह का ये खूबसूरत पल नई भोर का संदेश तो लेकर आया ही है, साथ ही अपने दिलों को एक नई ऊर्जा और उमंगों से भी भरने के लिए आया है। ये नया सवेरा हमारे सपनों को साकार करने आया है, तो क्यों ना दोनों हाथों से दिल खोलकर इसका स्वागत करें और इस शांत और पावन समय में अपने मन को थोड़ी सी शांति और एक हल्की सी मुस्कान दें। लीजिए एक लंबी गहरी सांस और हमारे साथ महसूस कीजिए इस नई सुबह की ताजगी को।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध

तो लीजिए जनाब, एक बार फिर से हम आपके पास आ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रम भोर सुहानी, और आपके साथ हूँ मैं रूपा धवन। तो दोस्तों, कहते हैं कि सुबह का जो पहला घंटा होता है ना, वही तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा आज। तो आज की सुबह खुद से एक छोटी सी बात कहिए, मैं आज के दिन का आभारी हूँ। जो बीत गया वो कल था, जो सामने है वो एक नया अवसर है। आज जब आप चाय या पानी का पहला घूंट लें, तो बिना किसी जल्दबाजी के बस उस पल को महसूस कीजिएगा। अपनी चिंताओं को थोड़ी सी देर के लिए दरवाजे से बाहर ही रहने दें। ओहो, मेरी तो चाय भी ठंडी हो गई। तो लीजिए मेरे साथ फिलहाल चाय का, चुस्कियों का आनंद।